क्या उसे न्याय विनो ले मिसी सालंस गाल जे पची लावे को सी पची पे मांस आवे को कस्टे मा ले चीन आरिवे हैं बिलीव यू मी ए पाले पाले पच्चीस चोजी आरिवे यं ट्राप नू पा कौन है मेला अवेक नू योर गार्डियन एंजल ही वॉक्स विथ यू ओके साक सालोंस गाजे यन एनो एनो ही बास अवेकू यन एनो ली लिकी वे यू वो वहाँ पे जावे कुली कॉल आ बी सबन मूवी जिमुन सबन नो नो नो नो नो नो नो नो ना पाजिमुन किने मूवी लो राते मो पकवाड़े साको सेप मो ना पाजिमुन किने मूवी ना पाजिमुन किने पाबों लो साला उठ पाले उठ दे उठे पाले उलोस गाजे इरिमे तुलो ला उठ मे पाले यो सी इ पा कैपाब दिस इज व्हाट आई बिलीव इन माय गार्डियन एंजल Yana sono. Mokon no saki puma. Mon satu yula da pu mo pe jekule ko. Jimu jino. No no no no no no no. Sa i en secret. Jeta sa ni pu.